0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंकती है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्ला दस सकदा कुछ दस के भी समझ नहीं होनी कुछ तेरिया ने कुछ मेरिया ने तेरा मिलना तेरा विछड़ना तू कदे परछावे तो नेड़े तू कदे सब तो दूर तेरा हासा तेरा रोना ते कदे कदे एकदम चुप होना सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया उच्ची उच्ची हसना सिखिया दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया हां खुशी है मैनू तू जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: थोड़े जाते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

वफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा

0: कानून कोई कैसे महफूज है, मेरा सवाल किसी का उरूज।
1: अर्ज़ रब्बे असर बावफा तो बेगदर, यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर। ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर। अर्ज़ रब्बे असर बावफा तो बेगदर, यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर। ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियाँ फेंकती है।
1: पेंट चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितन बहनू रेला आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

ठंडक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

चेक करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

0: नफरत में तो लेना कोई
1: हिप हॉप बनी लाइफ, कपड़े दिए खाना दिया, फैंस के रूप में खजाना, जीने के लिए जमाना दिया, परायों ने प्यार अपनों ने ताना दिया, मैं हिप हॉप नहीं कईयों ने दावा किया, मैंने हर तरीके का गाना दिया, नास के लेवल के साथ गाना किया, टेल मी कितने रैपरों ने जो गाया जिया, बता दो कितने रैपरों ने जो गाया जिया।

0: your home for community. CJMR 1320.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है। मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे? दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।